0: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: Forman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS and ICOM. Apply now.
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सब इससे नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
5: सिटी एफएम 89।
6: म्यूजिक हैज द पावर टू यूनाइट पीपल, ब्रेक बैरियर्स एंड इंस्पायर चेंज। Inclusion Rocks is a first-of-its-kind national initiative by Special Olympics Pakistan in collaboration with Eventus, featuring two of Pakistan's most celebrated artists, the legend Faisal Kapadia and current sensation Murtaza Kizilbash. In a three-city concert series, every ticket purchase contributes directly to the mission of Special Olympics Pakistan. Catch them in Karachi on 29th August, in Islamabad on 5th September, and in Lahore on 12th September. Get your tickets from ticketwala.pk. City FM 89, exclusive radio partners.
7: City FM 89.
8: Pakistan is failing its future.
9: Every single day, 27 mothers die giving life.
8: And 675 newborns don't see their first month.
9: It's a crisis we ignore.
8: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
9: Their growth, their brains held back forever. Why?
8: Poverty forcing families to buy empty calories.
9: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
8: A health system that is failing our mothers.
9: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
8: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
9: This isn't just a statistic. This is our future generations.
10: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a focus conference on child malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
11: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSite.
12: City FM 89.
13: We're playing your song.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
5: IELTS seems difficult? 4 sections. Limited time, high pressure.
6: Listening, reading, writing, speaking.
5: Not with AEO Pakistan.
6: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
5: Learn strategies that actually work.
6: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
5: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
7: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला बैंक
8: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
9: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
10: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
11: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
12: A new era begins.
13: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना ये है असल आजादी आपके लिए असल आजादी क्या है डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ
14: City FM 89.
15: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth, and future.
16: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
17: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
18: You're listening to City FM 89.
19: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Charmaine.
8: Changya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: City FM 89.
8: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
9: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है. आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है.
8: स्कूली बैंक जाने की क्या जरूरत है? इन्वेस्ट पार्क है ना?
9: इन्वेस्ट पार्क?
10: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें. ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
9: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
11: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
12: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: City FM.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Foreman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS and ICOM. Apply now.
2: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi. Jazz Cash app se Jazz V5 Fantastic Bundle lagao aur 1000 rupaye ke behtareen discount se fayda uthao. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye Jazz Cash hai na.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्ने आजादी मुबारक।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: You haven't blown the candles of your fifth birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan.
6: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
7: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight.
8: City FM 89.
9: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: Follow us on Instagram at cityfm89
4: for your infinite scrolling wheel fix.
5: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
6: cityfm89
7: Pakistan is failing its future.
8: Every single day, 27 mothers die giving life.
7: And 675 newborns don't see their first month.
8: It's a crisis we ignore.
7: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
8: Their growth, their brains held back forever. Why?
7: Poverty forcing families to buy empty calories.
8: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
7: A health system that is failing our mothers.
8: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
7: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
8: This isn't just a statistic. This is our future generations.
7: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition. A focus conference on child malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak. Knowledge partners, International Research Force, GlobeSite.
10: City FM 89. We're playing your song.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
4: City FM 89.
5: Easy पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. Easy पैसा डिजिटल बैंक. Easy वाला बैंक.
4: City 89.
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
8: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
9: अ बॉन्ड ऑफ अ मदर एंड चाइल्ड इज लाइक नो अदर. We lose 9,800 new mothers during childbirth. With access to proper nutrition during pregnancy, we can save our hopeful mothers.
10: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
11: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight.
12: City FM 89, we're playing your song.
4: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
6: फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज has a 160-year legacy of providing a supportive environment

0: with their innocence. I don't think we'll be seeing him again.
1: Antidote to your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, where playing the song.
5: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
3: You're listening to City FM 89.
4: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide.
5: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
6: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight.
7: City FM 89.
8: Attention, the standard commute has been decommissioned.
9: Introducing a system override for your ears. New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
9: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
10: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
11: Tune in or get left behind.
12: You're listening to City FM 89.
13: We're playing your song.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies, affecting their cognition, growth, and future.
4: Act Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
5: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning and Development, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight.
6: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
0: City FM 89, we're playing your song. Everybody go.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: You got me going crazy.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
4: We're playing the song. Khair to hai. Jaldi mein kahan ja rahi ho?
5: Government securities mein invest karna hai. Aaj apply karne ka aakhri din hai. Aur bank ka time bhi khatam hone wala hai.
4: Really, bank jaane ki kya zarurat hai? Invest Park hai na.
5: Invest Park?
6: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
7: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
8: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes kharide aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
9: Khush khabri. सिंध की स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपना कारोबार बढ़ाने का एक बड़ा मौका यूनिटो पैदार और सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड की SEDF ग्रांट स्कीम के तहत एलिजिबल SMEs को 3.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट सपोर्ट दी जा रही है अगर आप फिशरीज और एक्वाकल्चर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी वेस्ट रिसाइकलिंग और डिस्पोजल वुमेन लेड बिजनेसेस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में काम कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए है ये स्कीम लाड़काना थट्टा बदीन थरपाकर और सजावल में काम करने वाले या इन डिस्ट्रिक्ट्स में अपना कारोबार शुरू करने वाले ख्वाहिशमंद SMEs के लिए है एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है देर ना करें अपना इनोवेटिव और वायबल बिजनेस आइडिया आज ही तैयार करें और SEDF ग्रांट पोर्टल पर अपना बिजनेस प्लान सबमिट करें
10: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में खुशी में यादों में जज्बों में इरादों में ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर

0: City FM 89, we're playing your song. It's 5:30 PM.
1: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
4: Forman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially, and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS, and ICOM. Apply now.
5: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला बैंक
6: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
7: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Mega director James Cameron has suggested his time making Avatar films may be coming to an end, and he is now considering other stories. The filmmaker has directed all three entries in the fantasy sci-fi franchise to date, most recently last year's Fire and Ash, and two further Avatar films have already been announced. But in a new interview, he has hinted that he is now looking to move on to other projects.
2: City FM 89.
7: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं ईजी पैसा डिजिटल बैंक ईजी वाला बैंक
8: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
9: Din mein apne paison se kisi raah chalte ki help karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
10: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक
11: 79 सालों से पीटीसीएल है पाकिस्तान के हर राब्ते में खुशी में यादों में जज्बों में इरादों में ये कौमी तराना पीटीसीएल की तरफ से पाकिस्तान की नजर

0: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान्स मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, ₹79 तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
4: We're playing your song.
5: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
4: We're playing your song.
7: मंजिल अभी बाकी है, हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवा है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है. हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया. SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है. SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं. तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स. खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसअत दी गई. इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया. शाहराहे भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली. ज़रई खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया. बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, ज़रई अदवियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है. पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ دھابیجی اسپیشل اکنامک زون کو سی پیک کے تحت جدید صنعتی مرکز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ خیرپور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا۔ ریڈ بس، پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس، اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
8: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
9: You're listening to The Rush Hour with ABD.
10: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we're talking about how Apple locks you into their ecosystem. Now, supposing I bought an iPhone 2 years ago and I say, hey, let me buy some AirPods and an Apple Watch with it. Then I decide to switch from my iPhone to an Android phone, but I still have these accessories. Now, I can still technically use the AirPods with an Android phone. However, a lot of features like spatial noise, you know, the noise cancellation, if I'm not mistaken, does work. But stuff like spatial noise, I don't even know if the heart rate would then go from the AirPod 3s. You have small, you know, issues over there. But fine, you can at least use it. However, your Apple Watch, which you've spent a good amount of money on, probably close to $200 if you've gotten the Apple Watch Ultra, that's a brick now. It cannot even connect to an Android phone. And that is where I think that is a bit problematic. That should not be the case with any product. I think what they do with the AirPods is fine. Yes, you do have a product. You want people to buy your other products for it. That makes sense. But I do not think it makes sense to have an Apple Watch not be compatible at all with an Android phone. And I'm saying this as an Apple fan. I do think that is a problem. They should not be doing that. I also do want to talk just a bit more about the software, but I know I've been rambling, so I'm going to cut to a break, play some music for you guys. When we come back, we will be discussing the software, and then I promise I'm done with the story.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89, we're playing the song.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89, we're playing the song.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
5: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank का time भी खत्म होने वाला है.
4: इसलिए bank जाने की क्या जरूरत है? Invest Park है ना?
5: Invest Park?
6: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
5: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
8: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
9: फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS and ICOM. Apply now.
10: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
0: सिटी FM
1: 89.
11: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
1: City 89.
12: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash app डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना?
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द JazzCash ऐप नाउ।
6: City FM 89. You got me going crazy.
7: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। JazzCash से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए JazzCash है ना?
8: City FM 89.
9: Pakistan is failing its future.
10: Every single day, 27 mothers die giving life.
9: And 675 newborns don't see their first month.
10: It's a crisis we ignore.
9: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
10: Their growth, their brains held back forever. Why?
9: Poverty forcing families to buy empty calories.
10: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
9: A health system that is failing our mothers.
10: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
9: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
10: This isn't just a statistic. This is our future generations.
11: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
12: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
13: You're listening to City FM 89.
14: We're playing your song.
15: Hello there, folks. Welcome to another episode of The Dark Room. I'm Tapu Javeri, and you are listening to City FM 89's Dark Room. We have some incredible music in store. I hope you all are prepared for this. The weather is, it's lovely. It's sort of windy. It looks overcast. And yet, this music is going to make it feel even better. This is Harry Belafonte with the Banana Boat song, or Day-O.
16: Day-O!

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes kharide aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa digital bank. Easy wala bank.
6: IELTS seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
7: Listening, reading, writing, speaking.
6: Not with AEO Pakistan.
7: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
6: Learn strategies that actually work.
7: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
6: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
8: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
8: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
10: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
11: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर रابطے में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तरह ना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: City FM 89, we're playing your song. It's 7:30 p.m. City FM 89.
1: You got me going crazy.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना.
4: Foreman Christian College has a 160-year legacy of providing a supportive environment where students can excel academically, socially, and personally. Scholarships and financial assistance available. Intermediate admissions open for FA, FSC, ICS and ICOM. Apply now.
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
6: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
7: सिटी एफएम 89.
8: मंजिल अभी बाकी है, हौसला जवान, अज़्म मजबूत और सफर रवां है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दूर अंदेश क़यादत, तरक्की पसंद सोच, अवामी खिदमत के विजन की रहनुमाई में मसरूफ है. हुकूमत सिंध ने जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात का मजबूत निज़ाम कायम किया. SIUT, SICVD, JPMC, NICVD के सैटेलाइट सेंटर्स, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद सहूलियात दस्तियाब है, जबकि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ न्यूरोलॉजी में लाखों बच्चों को इलाज फराहम किया जा रहा है. SPHF दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसके तहत 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं. तालीम के फरोग के लिए हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वेमेन, शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, बेगम नुसरत भुट्टो वेमेन यूनिवर्सिटी सक्खर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अरोर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन हेरिटेज, शहीद बेनजीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना और बख्तावर कैडेट कॉलेज फॉर गर्ल्स. खुसूसी अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन, बहाली, हुनरमंदी और खुद मुख्तार जिंदगी के मौके को मजीद वसत दी गई. इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए सिंध हुकूमत ने जदीद शाहराहों, पुलों और राबिता सड़कों का वसी जाल बिछाया. शाहराह भुट्टो कराची के सनती इलाकों, बंदरगाहों और मोटरवे M9 को आपस में जोड़ रही है, जबकि 141 से ज्यादा सड़कों और 825 किलोमीटर रोड नेटवर्क्स की बहाली मुकम्मल की गई, जिससे लाखों अफराद की आमदोरफ, तिजारत और रोजगार को नई रफ्तार मिली. जरिए खुशहाली के फरोग के लिए सिंध हुकूमत ने किसान दोस्त मंसूबों का एक जामे सिलसिला शुरू किया. बेनजीर हारी कार्ड के पहले मरहले में तकरीबन 2,98,000 रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद, जरिए अद्वियात, जदीद मशीनरी पर सब्सिडी, रियायती कर्जे, फसल बीमा और कुदरती आफात की सूरत में माली मुआवनत फराहम की जा रही है. पानी के हर खतरे को कीमती सरमाया बनाते हुए लाखों एकड़ जरई अराजी को दोबारा पैदावारी अमल से जोड़ा जा रहा है. धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सी पैक के तहत जदीद सनती मरकज के तौर पर तरक्की दी जा रही है. खैरपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइट कराची, नूरियाबाद, बिन कासिम और दीगर सनती जोन्स में बुनियादी सहूलियात बेहतर बनाकर मुल्की और गैर मुल्की सरमाया कारी को फरोग दिया जा रहा है. सिंध हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट में जदीद दौर का आगाज किया. रेड बस पाकिस्तान की पहली ईवी बस, पिंक बस और खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही है, जो खवातीन को महफूज और باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں۔ توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
7: سٹی ایف ایم 89۔
1: A plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesight, Aga Khan University.
10: City FM 89.
11: Mornings evolve and so do we.
12: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
13: Hello, hello, hello. It's me, RJ Sharmeen, your host on the breakfast show.
11: The freshest music, the hottest gossip.
12: And the energy Gen Z lives on.
11: It's bold, it's current, it's your morning routine.
12: The breakfast show.
11: Only on City FM 89.
14: City FM 89, we're playing your song.
12: You're listening to
15: Dark Room with Tapu Javeri.
16: You're in the Dark Room, City FM 89, Tapu Javeri, and a lot of incredible music. Up next, we have a cover again. The original was by Lil Willie John. This is, however, the cover. This is Piggy Lee with Fever.

0: prolonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ.

0: आज ही शॉपिंग करें और कैश बैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी Jazz Cash app से Jazz V5 Fantastic Bundle लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
0: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: सिटी FM 89.9.
1: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और हजार रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना.
6: We are
5: City FM 89.
7: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तरह ना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है।

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर. 79 रुपए तक की बचत के साथ जश्न आजादी मुबारक.
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: यू हैवन्ट ब्लोन द कैंडल्स ऑफ योर 5th बर्थडे येट. हाउएवर, यू फेस अ 40% रिस्क ऑफ बीइंग स्टंटेड. दैट इज द स्टोरी ऑफ अ पाकिस्तानी चाइल्ड. प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी मदर, फॉर अ प्रॉस्परस पाकिस्तान. द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
7: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
1: City FM 89, your drive along companion. You're listening to
9: Dark Room with Dapu Javeri.
10: The wonderful Liza Minnelli singing that, one of her favorite tracks, because it comes out of my mom's favorite album. So that was For Judy Garland. And up next, let's wake up with this fabulous Motown classic. This is Jackie Wilson with Reed Petite.

0: City FM 89, we're playing your song. It's 8:30 PM. We're playing your song.
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz B5 Fantastic Bundle लगाओ और ₹1,000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना?
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, ₹79 तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
0: You got me going crazy.
5: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द JazzCash ऐप नाउ.
6: उनासी सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में. ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
7: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
2: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM
1: 89.
8: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
9: अ प्लेट दैट इज फुल मे नॉट बी एनफ. मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान्स चिल्ड्रन हैव माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग देयर कॉग्निशन, ग्रोथ एंड फ्यूचर. द इमरजेंसी वी कैन नो लॉन्गर इग्नोर. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of Natural Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight, Aga Khan University.
2: City FM 89, we're playing your song.
11: Hold on! Special delivery coming through!
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy as 03142-898989.
12: Save our number now and WhatsApp us.
1: 89.
15: We're playing your song.
16: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't, I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
2: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
17: Dark Room with Tapu Javeri.
18: You're in the Dark Room, City FM 89. Time for me to wake you all up a bit, and this is going to do it. This is Tom Jones with It's Not Unusual.

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Coming up next.
3: Future Sounds.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Mega director James Cameron has suggested his time making Avatar films may be coming to an end, and he is now considering other stories. The filmmaker has directed all three entries in the fantasy sci-fi franchise to date, most recently last year's Fire and Ash, and two further Avatar films have already been announced. But in a new interview, he has hinted that he is now looking to move on to other projects.
7: City FM 89.
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
9: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
10: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
11: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ cityfm89
12: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रील फिक्स।
13: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर, सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और ₹1000 के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना?
14: We're playing your song.
15: Pakistan is failing its future.
16: Every single day, 27 mothers die giving life.
15: And 675 newborns don't see their first month.
16: It's a crisis we ignore.
15: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
16: Their growth, their brains held back forever. Why?
15: Poverty forcing families to buy empty calories.
16: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
15: A health system that is failing our mothers.
16: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
15: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
16: This isn't just a statistic. This is our future generations.
15: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
17: Principal Partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University. 89.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
7: We're playing your song.
8: With food prices jumping up by 50%, a simple nutritious meal becomes an impossible luxury. An empty plate robs a child of their energy, their learning, and their future. Poverty strips away proper nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: City FM 89.
11: On the dial. You're listening to
12: Future Sounds.

0: It's 9:30 p.m.
1: City FM 89.
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: Follow us on Instagram at cityfm89
6: for your infinite scrolling wheel fix.
7: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना?
8: You haven't blown the candles of your 5th birthday yet. However, you face a 40% risk of being stunted. That is the story of a Pakistani child. Proper nutrition for every child, every mother, for a prosperous Pakistan. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: Principal Partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturer. Supporting Partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, GlobeSight, Aga Khan University.
10: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
11: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89। वी आर
12: प्लेइंग योर सॉन्ग।
13: यू आर लिसनिंग टू
14: फ्यूचर साउंड्स।
15: फ्यूचर साउंड्स।

0: सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।
1: You can't build a strong home on a weak foundation. When an expectant mother suffers from malnutrition, her unborn child suffers too. Entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
2: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
3: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: You're listening to
5: Future Sounds.
6: Future Sounds.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
4: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैज कैश है ना.
5: Plate that is full may not be enough. More than half of Pakistan's children have micronutrient deficiencies affecting their cognition, growth, and future. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English biscuit manufacturer. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, UNICEF, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, Globesite, Aga Khan University.
7: City FM 89.
8: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: City FM 89, we're playing your song. It's 10:30 p.m.
1: City FM 89.
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए JazzCash है ना?
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी JazzCash ऐप से Jazz V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ। अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए JazzCash है ना?
6: You're listening to City FM 89.
7: 79 सालों से PTCL है पाकिस्तान के हर राब्ते में, खुशी में, यादों में, जज्बों में, इरादों में। ये कौमी तराना PTCL की तरफ से पाकिस्तान की नजर।

0: on City FM 89.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और 1000 रुपए के बेहतरीन डिस्काउंट से फायदा उठाओ. अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
4: City FM 89 is now live on WhatsApp.
5: It's so easy.
6: 0314-289-8989.
5: Save, text, voice note or call to get your song played.
6: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
7: We're playing your song.
8: Food builds a child's body up, but unclean water tears it right back down. Every sip of contaminated water brings silent infections that wash away essential nutrition, leaving growing bodies weak and stunted. Without clean water, there is no good nutrition.
9: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
10: City FM 89.
11: Attention, the standard commute has been decommissioned.
12: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective.
14: The same 24 hours, but a completely different vibe.
15: Join ABD as he takes over the streets.
16: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
17: your evenings just got an upgrade.
15: The rush hour with ABD.
18: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
19: Tune in or get left behind.
7: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
17: Non-Stop Hits.